0: extreme energy drink.
1: Radio Vinny FM. Radio Vinny FM.
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज.